गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर हारे सुन चंदू चिंतायत अनक पाओ विचार चौवे
1: वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों हफ्ता वरी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी कोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं तू ठाकुर ऊच भगवान। सहज धन गुरु रामदास कृपालू जी का उचारण किया हुआ यह शब्द जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नू जिथे बयान किया है उथे एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा का लिया है। दुख होवे सुख होवे खुशी होवे गमी होवे मैं अपने साईं तो बिना कभी किसी अगे पुकार नहीं की। शब्द आपां सरवण कीता है मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आ गए अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करूं बिनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक कृपालता होर गुरु रामदास जी ने की कहिंदे कई बारी असी परमेश्वर दे गुणा जी जदों गल करने हैं ते कोई घटना हैरानी पैदा करने वाली वापर जाए ते असी सोचने हैं कि यह हो सकता है। मेरे धन गुरु रामदास जी ने नाल एक प्रमाण उदाहरण वजो दिता कहिंदे परमेश्वर की इन्नी वडियाई है जिस बंदे नू कोई नहीं जानता जे परमात्मा मेहर करे ते उन्हूं सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज यह किवें हो सकता है? साहब कहिंदे ने हो सकता है जो असंभव है वह संभव हो सकता है। ते नाल उदाहरण की दिती कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने अज तिकरा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन। साहब कहिंदे ने विचे धरती विचे पानी विच कास्ट अगणतरी जै देख तीन हिस्सा पानी है एक हिस्सा धरती है ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी होने के बावजूद टिकाया है। यह तो मानो जिवें उन्हें बकरी ते शेर दोनों टिकट से बने हुए चार चुफेरे पानी है। आपां जदों गलोब नू तकने हैं चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आउंदा है धरती का किन्ना कु हिस्सा है। साहब कहिंदे विचे धरती विचे पानी विच काश अगणतरी जै बकरी सिंह इक तै थाए रख है मन हर जप भरम पाओ दूर कीजिए।

उस गड्डी नूं देख के झोके नमस्कारा करने आ, क्यों इहदे विच मेरे साहिब दी असवारी भी आउंदी है। मैं कहना राग किन्ना कु पवित्र है जिस भांडे विच मेरे बाबे नानक दा शब्द टिकिया पिया। राग तां उह सेज है जिथे गुरु दा शब्द निवास करदा है, पर बदकिस्मती है मैं शब्द तां वरत्या है। दिनों दिन आपां देखने पया मेहनतां वाले घालना घालण वाले अपनी जिंदगी नूं समर्पित होके चलण वाले। मैं पिछले दिन एक बेनती की आना मैं इतिहास से वे एक शब्द हुंदा है लोड़, एक शब्द हुंदा है लगन। लोड़ विच ते लगन विच जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नी देर तक मेरी लोड़ है मैं कथा करनी, मेरी रोटी नहीं चल रही। जितने मेरा काम बन गया मैं कह दिता चलो जी अज तो बाद काम छड़ गया, इहदा मतलब वो मेरी लोड़ सी। लोड़ वाले बंदे छड़ के जांदे नहीं, पर लगन वाले बंदे मरदे दम तक उस कला नूं समर्पित रहिंदे। रब मेर करे कि लगन पैदा हो जाए, केवल लोड़ तक सीमित ना रहिए। आपां दूसरा शब्द सरवण कीता, शाम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूतां लाई, बाणी ने दोनों पक्ष रखे ने। एक नींद होवे जिदे आउण नाल साई भुलदा है, एक नींद होवे जिदे आउण नाल सुपने विच अपनी चलकारे दे जांदा है। देखो दोनों तरह की नींद है, इधर शाम सुंदर तज नींद क्यों आई ते उधर गुरु साहिब ने बड़े कमाल दियां उदाहरणां दित्तियां। कहिंदे ने मैं रोबंदी सब जग रुन्ना, रुनरे बणो पंखेरू, एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों फिरों बिछोड़ी। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोए। हुण कहिंदे ने चंगा हो जाए मैनूं नींद आ ही जा, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए। वासना विच आई कोई नींद अंदर नूं खंडाएगी, पर बैराग विच सुता होया बंदा भी रब दे गीत गाए। शायद कृपालू मेर करन ए आपां शब्द दो सरवण कीते ने, भावां कि असी अरदास दी विचार पै करने। जिवें भाई साहिब होणा ने दस्या है कि तकरीबन तीजा साल चलदा पे, पहले साल ही यतन कीता सी, जिन्हां सज्जणां ने हुक्म कीता मैं सोचिया महीने विच काम खत्म हो जाएगा, पर ज्यों ज्यों समा लंघदा पे गुरबाणी नूं खोजने आ, इतिहास नूं पड़चोलने आ, ते मेरा ख्याल है कि कोई भी जबान जिहड़ा एक एक शब्द उहनां गुरमुखां ने अरदास दा घड़ के पाया, मैं कहना एक एक शब्द कई कई सालां दी व्याख्या दा मुताज है। एक एक शब्द जिहड़ा इह पिछले दिन ही अर्ज कीती सी आओ, पर जो इस गुरु घर दी एक मर्यादा है कि हर बुधवार कवि संतोख सिंह जी दा रचक श्री गुरु प्रताप सूरज ओदी विचार कीती जांदी। संखेप जी अर्ज मैं कर देवां, आप सब नूं पता है एक वारी अगे भी इत्थे विचार कीती सी, एक दिन आया सी समां कि श्री गुरु प्रताप सूरज दे रचयिता ने भाई संतोख सिंह जी, भाई संतोख सिंह दे उस्ताद ने ज्ञानी संत सिंह जी, जिन्हां ने दरबार साहिब दे विच सोना लवाया सी शेरे पंजाब नूं कह के। मैं हैरान होया कि जदों शेरे पंजाब भाई संत सिंह नूं चिट्ठी लिखदे ने, ग्रंथी होवे ते जीवन एक हो जिया शब्द लिखदे ने कि सत्कार योग भाई साहिब जीओ, उज्जल दीदार उज्जल बुख, गुरु सवारे गुरु प्यारे, गुरु दर ते सुरखरी हुए भाई संत सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शब्द कैसे भावना वाले जुड़ी। देखो मैं फिर अर्ज करा कि वह बंदा जिन्हें गुर प्रताप सूरज लिखे हैं, जदों लिखण लगा अपने घर एक वक्त की रोटी नहीं सी पकदी, अज लखां ग्रंथियां प्रचारकां दी भाई संतोख सिंह रोटी बना गया। हकीकत है उन्हां दा एक कवित मिलिया सी, मैं वह अर्ज कर देना चाहना जरूरी। इन्हां ने एक गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ लिखे, असीं कथा गुर प्रताप सूरज कह दें, एक श्री गुर प्रताप सूरज। गुरु नानक प्रकाश विच गुरु नानक साहिब जी का जीवन है, ते श्री गुर प्रताप सूरज विच गुरु अंगद साहिब तो लैके ते बंदा सिंह बहादुर तक का पूरा समाचार भाई संतोख सिंह ने दिता। इन्हां दा जन्म पिंड नूर दी सरां तरन तारन साहिब के नेड़े, जदों आपां चबाल नूं जाने हां
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।

0: श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने याद किया काल जो
1: जाग रहे हैं
0: श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।

साहब जी पढ़े ते अगे संतां नूं प्रचार कीता उदू अगे इसे प्रकार तरीके दे नाल चलदियां चलदियां बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए उन्हें गुरमुखां दे राही इह विद्या श्री अमृतसर साहब च प्रचार दी रही ਉਦੋਂ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ

0: विचार छह ना सके ते छाहे को निफल जाए गवार जे साधु सरनी परे तिनके कवन विचार दंत जीव जिम राख है दुष्ट अरिष्ट संघार ए तो महाराज गवार झले लोग ए की बिगाड़ सकते ने तो आड़ी छां भी छो नहीं सकते
1: देकर दर्व तुरक गन आने
0: देखो इन्होंने किन्ना रुपया दे के बहुत सारे तुरक चढ़ा के लिया
1: जतन मैं लगे महाने
0: ए तो रात दिन इन्हों के कोई पाठ पूजा का काम है कोई भले का काम है कोई परोपकार का काम है जेड़े ये जे दुष्ट बंदे होंगे ने वह सुते पे भी दुष्टता ही जागदे भी दुष्टता ही चितवदे ने
1: सुन कर उदे सिंह भी कहो सिर लग बैर इनो को लहो
0: सुन के भाई उदय सिंह जी ने भी यही वचन कहा कि महाराज इन्हों का जेड़ा बैर है यह सिर दाइए तक है भी जां मर जो जां मार दो ए अंदरों अंदरों तां बहुत भैड़े हन
1: सतगुर छिमा धरत है ज्यों ज्यों
0: महाराज सच्चे पातशाह ज्यों ज्यों इन्हां नूं माफ कर दिंदे ने
1: मूर्ख कपट रचत है त्यों त्यों
0: ये मूर्ख बंदे समझदे ने कि महाराज हुण साडे नाल मिल घुल मिल गए ने जां महाराज नाल डरदे ना होण कोई इंजीं इंजीं गल्लां सोचदे रहिंदे हुणे आ बैठे इस करके ए सतगुरु महाराज का नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: लैन देन इनको न कोए तो मूड मत ठाने सोए
0: सो इस करके लैन देन है ही नहीं कोई इन्हां दे नाल साडा फिर भी मूर्ख मत्ती साडे नाल ऐसा धोखा कर रहे ने
1: श्री कलगीधर बाक अलाए
0: श्री कलगीधर पिता जी ने ऐसे सोहने वचन फिर कहे सिंघां नूं
1: ए पलटो सब ले बनाए
0: अरे देखी चलो ए ना ऐन चंगी तरह दा करारा किसे समय फिर आपां जवाब देवांगे इन्हां नूं
1: करै खालसा मैद बखेड़ा
0: ए तां कुछ भी नहीं है जदों खालसे दा फिर इन्हां नाल तकड़ा जंग होवेगा
1: दूलन बिखै पाए है फेरा
0: खालसा इन्हां दीआं दूणां दे विच फेरा पावेगा जाके फिर
1: समा पाए इनकी जड़ जाए राज खालसा करै बनाए
0: समा पा के इन्हां दीआं जड़ां तां पट्टियां जाणगीआं बिल्कुल ए मारदे ने छाला नरंगे दे सिर ते जद नरंगा ही ना रहा जफरनामा लिख के जद भेजिया नरंगे ने भी मर जाणा ते इन्हां ने भी नाल ही मर जाणा खत्म हो जाणगे इथे तो फिर सिंघा ने ही राज करना पहाड़ा में जाके
1: अब भी सुख तो सुप्त न दीजे
0: पर महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे हुण भी इन्हां नूं सुख दे नाल सौण ना दिओ
1: कही ग्राम तिखी कर लीजे
0: कहिंदे जिहड़ी पिंडां दे उत्ते कही करदे हुंदे सी पहलां भी इह वचन पुराने समें च महीना कु पहलां दो महीने पहलां आया सी कही करनी भाव जिहड़ी खेती चारे पासे उस खेती दे ना अपनी कही फेर लेनी टक ला देना एक है खेती साड़ी है इस प्रकार दे नाल पैसा उन्हां नूं दे दिंदे हुंदे सी भी आ पैसा लै लो भाई ए साडे घोड़ियां वास्ते है
1: खड़ग केत नित हमो सहायक
0: महाराज कहिंदे वाहे गुरु खड़ग केत जिन्हां दा नाम है अस केत अस तुज जिन्हां दे नाम ने ओ साडे सहायक हन
1: तू कह सकै कौन होए कायक
0: कौन फड़ सकदा ते कौन मार सकदा है
1: प्रथम मेल भी इनहो कीनो
0: पहला मेल भी तो इन्हां ने कीता सी अपने नाल
1: और कपट मुडन चित दीनो
0: फिर कपट इन्हां ने अपने मन दे अंदर रख के लड़ाई भी आपे कर ली
1: पलटा ले खालसा इनते
0: सो इन्हां तों खालसे ने पहला भी पलटा लिया हुण भी लवेगा
1: राज तेज बिरसै नित हंते
0: इन्हां हंगता वालियां दा राज तेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा
1: श्री मुक्ते इम हुक्म बखाना सुन हर क्यों सब पंथ महाना
0: श्रोमणी मुख विचों जदों महाराज ने अजा वचन किया सारे सिंह बड़े खुश होए गल महाराज का बिल्कुल सत है वचन कि उन्हां दे जिहड़े परिवार ने उन्हां दी खोज हुण राइटर कर रहे ने अपने उन्हां दे एक बंदे ने दस्या सी कहिंदा इन्नी माड़ी हालत है वह राजे दे परिवारां दी झोंपड़ियां च रहिंदे ने सारा दिन मजदूरी करदे ने मसां रोटी खाण नूं मिलदी है कहिंदा मैं उन्हां नाल गल्लबात छेड़ी कहिंदा हां जी साडे बड़े तकड़े राज सी राज घराणा सी सारा कुछ सी हौली

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते अस

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारो।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सचे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है, बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिल के, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो साध।

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने ये सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे ये इन्ह ने बहुत सारे जंग

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए, हौली हौली दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साढ़े सारे दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहिदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवै, लूट कूट कर मिट हट जावै।
0: हुण नित प्रति सिंगां दे दल आउंदे ने साढ़े इलाके दे विच,

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने,
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने,
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा,
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जा ही है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा,
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे,
0: सारे दुश्मनों नू मार करके किस प्रकार।
1: राज पाए किम कहिए तैसे,
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो हे पहाड़िए हो राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है, ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा।
1: वधे तेज किम लहे धरने,
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने।
1: ठहरे राज कौन कर करने,
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा।
1: बहुतन की किरत अलप करें किम,
0: ये बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है, ये हजार बंदा किवें कर सकता है। मैं तो ये पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है।
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम,
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है।
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज,
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू,
0: सारे दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा।
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा,
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा।
1: हान लाभ जाने इस बेरा,
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा।
1: वरतें वरतारा जग जथा,
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आउण वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा,
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहणे वचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए,
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए,
0: ये तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असी चाहुंदे आ उसे तरह की हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल,
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल, वो सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल,
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार,
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे, खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुगो दा दास बन जाएगा।
1: बाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भाई, अमर छको दाड़ियां जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनूं अपना, यह तो सारी दुनिया नूं भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, यह पहाड़िया नूं अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरन सो बरतै ऐसी सुनो सिख मन बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा है जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत बलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क्या है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गद के।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थ ये ने कि एक तो बस यही सारा दिन मन के अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विशे विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विशियां च परिवर्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्रे।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जटा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटा लंबिया लंबिया बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विशियां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करिया करनगे भई इह कहा करनगे मैनूं संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे। इस तरह की दुनिया हौली